जसोलपाथौ नेपाल सम्बत छिन्छसो पिखुद तसला थुपाहरू थु रेडियो नेपालको अन्य नदीसँग जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाया नोपी केन्द्रीय दुजा नपा पदाधिकारी तेगु शपथ ग्रहण च्याजो थी कोचिना तगुदु नपाङको महाधिवेशन स्वनिर्वाचित गुई गुमा केन्द्रीय दुज व नेमा दुज या शपथ ज्याजो थौ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थली जुइगु रासोपा सुचाउ बिगुदु थौ हे नोपी निर्वाचित केन्द्रीय समिति या बैठक सोनी गुन नेता पिसा जानकारी बिगुदु। नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ या मुको कागुदु निगम सञ्चालक समिति या बैठक वङ्गु चानी निसी छेलिगुयाना पेट्रोल डिजेल मटिचिको व हवा इन्धन व नसा जोरिएको एलपी ग्यास या मुको कागु ख निगम पेट्रोल लिटर पट्टिक निटका डिजेल व मटिचिको खे लिटर पट्टिक स्विदका महयागु ख साथियाना हवा इन्धन आन्तरिक पाखे लिटर पट्टिक पितका हवा इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय पाखे यया नीति लिटर पट्टिक अमेरिकी डलर निसो खुइ ज्ञातका मोयागुदु नसा जोरियागु एलपी ग्यास या मु लिटर पट्टिक सच्ची कटियागुदु अथियान हुगु मु कथ स्वकगु वर्ग कथन लाइगु ये पोखरा दिपायल व पेट्रोलिया मु लिटर पट्टिक सच्छिव गुइ नेतका डिजेले लिटर पट्टिक सच्छिव गुई ज्ञातका छगुदु स थोया न्या थो लाग्या पेट्रोल लिटर पट्टिक निसो व छिन्नेतका व डिजल लिटर पट्टिक निसो व नि ज्ञातका छिला तगु ख अथ्याना नापाङ्गु वर्ग कथन लागेको चार आली विराटनगर जनकपुर अम्लेगंज भलवारी नेपालगंज धनगढी बिरगंज पेट्रोल बिरगंज पेट्रोल लिटर पट्टिक सच्छिव गुई पेतका गुई पेतका फुटी ङेगु व डिजेल लिटर पट्टिक सच्छु व गुइनिरका फुटी ङेग ठेबा कायम याको खस निकगु वर्ग कथन लागेको सुर्खेत व दाङे पेट्रोलिया मु लिटर पट्टिक सच्छु व गुइ खुतका व डिजेलिया मु सच्छु व गुइ पेतका कोचिना तगु खस हवा इन्धन आन्तरिक या नोगु मु कथ लिटर पट्टिक निसो व नि गुतका छ गुदु अथियाना अन्तर्राष्ट्रिय हवा इन्धन या मु यया नीति अमेरिकी डलर झिङ्यास खुइ खुतका पोखरा नीति छगु दो सच्छिव भैरवा नीति दोची ने चतका लिटर प्रति लिटर कायम यागु खसा थुकी उपभोक्ता नसजर नसजोरियागु एलपी ग्यास लिटर पट्टिक गुई पेतका फुटी निगु किलोग्राम आ कया चङ्गु खसा आवानिसी निदो खुइतका ख क्या दैगु जुगुदु थ्यान्य ग्यास या मु प्रति सिलिन्डर निदो सचिव खुइदका दया चोङ्गुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारे पेट्रोलियमया भाग वहाँ वोगु व था वनी जुया चोङ्गुली इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसी स नुगु मु कोची धुङ्कानी स्वचालित मु प्रणालीको थ मु समायोजन यानागु निगम धागुदु थौ डेनियङ्क मिगनिसी मनसुन तब्यागुदु मनसुन सुरु जुगुदु थुगुसी अथे निवा लिपाजक मनसुन सुरु जुगु ख थौन डेया थिथि थासे आफ्ना वावैको सम्भावना कुबी गुलिन सतर्कता क घात मौसमविद पिन्छ इनाप्याना तगुदु जल तथा मौसम विज्ञान विभागीय मौसमविद रोजन लामी छानिया कथा आदेनियङ्क मनसुनी वायु प्रभाव उपया चङ्गुदु गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश लियदुगु लागा कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश फुक्कन थासे मनसुन आपलन जुया चङ्गुदु सा आलुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश यो सुपयाभुना चङ्गुदु कोशी मधेस बागमती गण्डकी प्रदेश भतिचा सुपयाभुना चङ्गु खने दया चङ्गु दुसा बागमती लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश मो थासे व कोशी प्रदेश चगुनी गु थासे मला नापा लाप्सा तोय भतिचा वा वैगु सम्भावना कुबिया चङ्गु विभाग या थापुदु महाशाखा या कथा थौ हिने देन्यङ्क सर्ग ख्युम्से चोनी गु व डेया हिमाली लागा छगुनी गुथासे मलाना पा लाप्सा तोया वा वैगु व चपु कुहा वैगु सम्भावना दु डेया पहाडी लागा यको थासे मलाना पा लाप्सा तोया भतिचा वा वैगु व तजागु पहाडी हिमाली लागा चपु कुहा वैगु सम्भावना कुबिगु धागु दुसा कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी व कर्णाली प्रदेश पहाडी लगाए छगुनी गु थासे आफ्ला वा वैगु सम्भावना कुबिगु महाशाखा जानकारी बिगुदु अथियाना चाने देन्यङ्क पूर्णतया
सुपया भुनी गु जुगु दुसा देया हिमाली लागया मो थासे मला नापा लाप्सा तोया पतिचा वा वोई गु संभावना कुबी गुना धागु दु देया पहाड़ी लागया छगुनी गु थासे तराई लागया मो थासे मला नापा लाप्सा तोया पतिचा वा वोई गु ओ पहाड़ी लागया छगुनी गु थासे आपला वा वोई गु संभावना कुबी गु मा साका सुचा बिगु दु थौ स्कुलिया बस केला सिराहाया छमा मचा ओहे बस यामा सहचालक सी गुदु लक्ष्मी पूरब तारी गाउँपालिका दुई पर्सा दुनिया सडक खण्ड स्कुल बस क्यबले यहाँ दुमा मचा ओ बस या सहचालक सिगुख पायोनियर एजुकेसन एकाडेमिया को एक ख 35-59 ल्याया बस क्यबले सहचालक लहा नगरपालिका 22 चुनीमा यहाँ दुमा ओमप्रकाश यादव ओहे विद्यालय आखबना चमा सप्तरी बोधे बरा बर्साइन नगरपालिका 8 कासन छेन्दुमा आ पाजुपिन्था चुनावया चोमा लक्ष्मीपुर पतारी दुई पर्सा चुनावया चोमा यादवदुमा समीक्षा कुमारी शाह झाँका जुगु थासे सिगु प्रहरिया धापुजु झाँका चुई थुङ्कानी विश्वना चोमा चालक यता मालेगु ज्या जुया छोङ्गु प्रहरिया धापुदु चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज दुनिया

पर्यटक त्यता हाथ्या बोलो नि गुली थो ल थो सफारी बन्द याना गु सुचम्बी गुख निकुञ्ज परम्परा नापा निसिन्द अवया चुख मनसुनिया हाथ्या अपया चुङ्गुली ये या कान्ति लोकपथे चाने सिया इले सवारी जोल न्याय गुली ल तिना बिगुदु जिल्ला प्रहरी कार्यालय कथन थो लपुई मकवानपुर व ये जिल्ला या सीमा ना या बागमती गाउँपालिका थितिथासे योको चलवना चुङ्गुली थो ल चाने सिया इले ती मागु जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर या प्रवक्ता नापाम प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव काफले जानकारी बिया दिगु खस वेकला मेघु सुच मयबुले तक्क मेघुए लपु छेला जुइता इनाप नापयाना दिगुदु नेपालगञ्ज ऊर्जा क्षेत्र नेपाल या ऊर्जा क्षेत्रीय निजी क्षेत्र नापाङको खुसी प्रसारण पूर्वाधार निर्माण ए थगु क्षमता प्रमाण इतिहास महत्व जागु सफलता हाते कया चुदु अथे ने तक्क निर्माण सम्पन्न जुइ मफौगु मर्स्याङदी करिडोर कथाया निसव निगु केबी मार्की चोक भरतपुर प्रसारण लाइन निचाको किलोमिटर खण्ड निजी लागा सक्रिय बोतिसा दक्षित्या दुनिया पुङकगु पुङके धुङ्कानी निहागु दु थुगुसी निजी लागा जल विद्युत उत्पादन जक मखु सरकार अनुमति पत्र बिगु प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापार नापा या फोइगु धुवाथुई कगु बान लागु हसना बिगु दु थो आयोजना ताइल निशाल पत्र खेलना चोङ्गु ली निजी लागा जलविद्युत प्रबर्धक तेसन थगु हे निर्माण या भाला कया ज्यापुङ कगु खथुकिया त नेपाल या ऊर्जा पूर्वाधार विकास ए निजी लागा नुगु उपलब्धि सार्वजनिक निजी साझेदारी या छगु दसु कथ सोगु दु सभामुख डोल प्रसाद आर्याल देया समृद्धि सुशासन व भ्रष्टाचार नङ्केको नीति राज्य सङ्घ प्रमुख अङ्गदती कार्यगत एकता गतिशीलता अपरिहार्य जुगुधया दिगुदु खुइचकको संसद दिवस या लसता हिग सिंह दरबारे गोसाको ज्याचोले सभामुख आर्याल दे देके गु नीति हताचया चङ्कु देया त याक्न हिजके गु चाहना पुङ्केता कार्यपालिका न्यायपालिका व व्यवस्थापिका या गति व भावना थथवेले मिले जुइ मागु धया दिलस सभामुख आर्याल संविधान अक्षरस पालना व कानुनी राज्य या अवधारणा या त छुन तोहले कमजोरी या मोजीको विचार पुङ्का दिल उगु ज्याझोले राष्ट्रसभा या नाया नारायणमान नारायण प्रसाद दाहाल संघीय संसद जनता भावना आवश्यकता आकांक्षा प्रतिबिम्ब जुइ मागुली बबिया दिलसा अध्यक्ष दाहाल संसदीय बहस यता तथ्य लिदसा मर्यादित रचनात्मक लिचो पिहाविको देके मागुली बबिया दिलसा दलीय स्वार्थ शिवे चेतना जनहित केन्द्र जुइत सांसद पिन्ता इनापेना दिल कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम संसदीय अभ्यास यता उपलब्धि कथ देके त जनता या मुद्दा यता केन्द्र केत या सहल या त बबिया दिलस वैक्लानी पाङ्गुले संसदीय गुणस्तर सेनावना चङ्गु धैगु विशेष संसदे संसदे सनुवाईगु भए उच्चार न्यायगु नोचु संसदेस पुना वैगु वस निसेकया थिथि मर्यादित जुइ मागु विशेष ध्यान कोसाला दिलसा कानुन मन्त्री गौतम संसद जनता सर्वोच्च संस्था कथा पलिस्ता या त औचित्य कायम या त संसद स्वयं हे मर्यादित जुइ त बब्या दिल साउदी अरब सरकार अनादुगु थिथि जेले सचाए कया चोपी सुई सोमा नेपामी कैदी पिन्ता माफी बिगुदु नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय हिग विज्ञप्ति पिथासे रमजान या लसत्या साउदी सरकार सुई सोमा नेपामी मनुतेता शाही माफी बिगुली साउदी अरब सरकार या त लसहना देशासे कृतज्ञता पङ्क गुदु सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा हुलाक सेवा या त आधुनिक विश्वसनीय नागरिक मैत्रिक दिएको स्या सरकारी सेवा मनुतेगु क्षेत्रक थेङ्केगु लिचोलाइगु माध्यम या कथा पुनस्थापित या नागु धया दिगुदु परम्परागत हुलाक सेवा या त सरकार नै से प्रविधि मैत्री व विशिष्टीकृत सरकारी कुरियर सेवा या कथा विकास च्यासे मनुतेगु छे छे सरकारी सेवा थेङ्केगु अभियान तालागु व थुक्याता छेलाबुला जुया चङ्गु नापा धया दिला हुलाक सेवा विभाग मिग या गोसागु हुलाक सेवा आधुनिक करण नापाया उच्चस्तरीय खराबलाई ज्याचोले संचार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा हुलाक सेवा पुनर्जागरण या नीति सरकार ज्याथलाई देखा निचना चुनागु धया दिल सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा नेपाल टेलिकम यात्रा सेवा ग्राही मैत्री व याकन गुणस्तरीय सेवा लल हेता लिचो लाइको कथन देखे त उचम्बिया दिगुदु संचार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा मेघ सुन्धारा दुगु नेपाल टेलिकम या सूचना प्रविधि निर्देशनालय या कथन दुगु बिजनेस सपोर्ट सिस्टम बिएसएस विभाग व दूर संचार कार्यालय निरीक्षण या झोले सेवा प्रवाह या त अञ्च सेलनाके त पारदर्शी डिजिटल प्रणाली सेलिदंसा क्या त उचम्बिया दिगुख
मिगाहे चलचित्र विकास बोर्ड नि खुकगु दमुज्या लसता याता कखाना दिशे

0: संचार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा चलचित्र लागय थाथेया आवश्यकता त क घाता कानुनी त्यो ज्याचो पाके उद्योग एटा सेला कि त सरकार ज्याचो नागु ध्याय दिल चलचित्र विकास बोर्ड अन्थुगुसिया अभिभावकीय भाला क घा मागुली नप वैक्लम बेदिल सर्वोच्च अदालत नेकपा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेल रिहाई फोना दारियागु बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटे मेगु मुद्दा नापा स्वपुदुगु फाइल लिकायत आदेश बिगुदु न्यायाधीश मि टेक प्रसाद ढुङ्गाना मेघराज पोखरेललाई संयुक्त इजलास स्वपुदुगु अदालत समुदाय मिसी लिकया पिएसी तोकेता आदेश यागु ख संयुक्त इजालास दीपक भट्ट नापा प्रतिवादी जुया विशेष अदालतले दायर मुद्दा मिसिल फोनेता आदेश यागु दु साथियाना भट्ट नापा विपक्षी जुया उच्च अदालत पाटने दायर जुगु बैङ्की कसुर मुद्दा सक्कल मिसिन पिकाता ना आदेश बिगु दु अदालत आशिष श्रेष्ठ नापा प्रतिवादी दुगु भीमा नापा कसुर मुद्दा मिसिल जिल्ला अदालत यहाँसँग लिकातना आदेश बिगुदु अध्ययना नेपाल सरकार बाध्य जुया जिल्ला अदालत यहाँसँग दर्ता जुगु प्रतिवादी सुलभ अग्रवाल या मुद्दा मिसिल लिकातना सर्वोच्च आदेश बिगुदु सा दीपक भट्ट नापा प्रतिवादी जुगु धितो पत्र नापाको सूर्य जिल्ला अदालत यहाँसँग दायर जुया चोङ्गु मिसिल लिकातना सर्वोच्च आदेश थया तगुदु आदेश पनि अब ख अमेरिका सर्वोच्च अदालत अमेरिका जन्म जुइपे मचा मस्ते एगु नागरिकता कायदैगु संवैधानिक अधिकार कायम जिगु फैसला न्याङ्कगु दु अदालत राष्ट्रपति ट्रम्प पिथाङगु जन्मसिद्ध नागरिकता नापाया प्रतिबन्ध छेलेगु ज्याधल आदेश या त अस्वीकार्य गुदु कासा जानकारी फिफा विश्वकप ढेन्टे बल्ला कथ मिग नापाङ्गु कासा आइभरी कोस्ट एटा बुकुसे नर्वे लिपाङ्गु 16 थाउँगु दु अमेरिका डेलास रङ्गशाला जुगु कासा नर्वे आइभरी कोस्ट एटा 2-1 गोलम बुकाबिगु खासा आ लिपाङ्गु 16 नर्वे ब्राजिल ढेन्डे बलायना चङ्गु दु फिफा विश्वकप फुटबल ढेन्डे बला कथङ्गु चाने जुगु मेगु कासा फ्रान्स स्विडेन यता बुकुसे लिपाङ्गु 16 थाउँगु दु सा अमेरिका न्युयोर्क न्यू जर्सी रङ्गशाला जुगु कासा फ्रान्स स्विडेन यता 3-0 गोल बुका बिगु ख मेगु 16 फ्रान्स पराग्वे यता ढेन्डे बलायना चोङ्गु दुसा आ मेक्सिको इक्वेडर दथि कासा जुया चोङ्गु दु आ मौसम या जानकारी थौ देन्यङ्क स्वर्ग खिउँसे चोनिगु जुगु दुसा देया हिमाली लागया छुन थासे पहाडी लागा यको थासे व तराई लागया छुन थासे मलनापा लाप्छ तय भतिजा वावैगु सम्भावना दु कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी व कर्णाली प्रदेश पहाडी लागया छगुनिगु थासे आप्लौ वावैगु सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या थापुदु वङ्गु नि बेगौस यहाँ सोनिगया क्वाज निन हेगु डिग्री सेल्सियस जति लुयाउगु खसा थाउन हिने यहाँ सोनिगया क्वाज निन हेगु निसे नि गुगु डिग्री सेल्सियस जति चोनिगु टुकुमा दु थौ सुथे ये सोनिगले ज्ञाता इज ज्ञाको मिनेटे लुया वगो सूर्य शनि ल नेता इज या नेगु मिनेटे बि रेडियो नेपाल नेपाल भाषा या समाचार पुन चिता अहिले नेपाली भाषा या समाचार नेना दिशा शुभ
1: सार्वजनिक सेवामा महिला अपाङ्गता भएका व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक विपन्न वर्ग सीमान्तकृत समूहलाई प्राथमिकता दिउँ
2: यस्ता समुदायको पहुँच विस्तार र जनचेतना अभिवृद्धिमा सबैले सहयोग पुर्याउँ
1: भ्रष्टाचारले यी समुदायलाई पार्ने प्रभावहरूको पहिचान गर्दै सचेतना अभिवृद्धि गरौँ
2: नेपालमा सुशासनको पहल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकारी

बिलामी छाने तङ सक्सो सोन्पा खुला सोक्ला डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले तेरिकी थुलाम देमा थु इन्सिसी सक्सो सोन्पा हम्पुम सोक्ला सोभिता गौतम महामन्त्रीला विपिन कुमार आचार्य छाक्रोक महामन्त्री खुला सोक डिजेल तङ मटितेल्ला ट्याङ्गासिका सुम्चु तङ समाजप ग्यासला सिलिन्डर चिक्ला सही चिक्चाकु इन जम्बुलिङ बजारला पेट्रोलियम पदार्थ तुई गोङ च्याक्सीमा तङ इन्डियन ओइल कर्पोरेसन आईओसी की तेनतेन क्या गोंग की थो संबंधन यमुला संग पेट्रोल डीजल मटीतेल संग गैस की गोंगशा कुन दीपर लारंग एम बी डिमडुल संगमेन ग्यालियोंग महासंघ की दांग गुने जुन पेट्रोल डीजल मटीतेल तंग गैस की गोंग चाक्सीमा ऑटोमेटिक सिस्टम नंगसिन गोंग की थो यंगनुंग तेन तेन की गोला शुंगतांग क्यान शुआजांग वाय महासंघ की चिखेप पुण्य प्रसाद सिटौला की ऑटोमेटिक सिस्टम नंगसिन गोंग की थो टडी की गोला शुंगतांग क्यान शुआजकु ख्यातोक नांगसुंग काठमाडौँ महानगरपालिका कि लामखुट्टेकी फेनेगेको डेङ्गु नजामेता जप तन्दोकला लार्बा छोलुप तङमेता जप ल्यारिङ जिन्क्योङ क्यानवाए तन्दा तिङसो कि तुसोला डेङ्गु कि निरपुतुई थोफर्सीमा महानगर कि दि असार ला नाङ लरङ थेङताङबो कि ल्यारिम नङसिन महानगर कि ओडा तियो तिरिला लार्बा छोलुप तङमेता जप ल्यारिम कि जिन्क्योङ क्याउ सिएनवाए ती ल्यारिम कि तन्दोकला काठमाडौँ महानगरपालिका कि ठोतेन ल्याचेतपा ठोतेन स्वयंसेवक तङ चिसोकला डेलो तुप सकपा तुई कुसाप्तिओला जङदर बिन्ने लगलेन कि तुप टडी क्याउ महानगर कि नजा युङमो जोप ल्यारिम कि छोकमी ऋषि प्रसाद भुसाल कि ख्यान्तोक नङ्गुबिन भुसाल कि सेतुप नङसिन काठमाडौँ महानगरपालिका कि यर्बी तुसोला डेङ्गु नजा मेता जोप तन्दोकला जङदर ङ्याउ ल्याचेतपा मिरा तोङ चिक सैटुक तङ नप्चु लगलेन कि तुप टडी क्याउ सेनवाए नाम गिरुवा कि क्यों तेमा खाङ्री तङ फु सकुल्ला उङथोपु कले तेमा सुङ्क्योप तङ रोक्रम कितुप्ला अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोष कि यम्बुला अरब चिक तङ करोड सुम्चु सोआ सुम्चो कि ट्याङ्गा अनुदान बिनुवाए नाथुङ तेदिन खोरुक लोन खाङ तङ जम्बुलिङ खाद्य ल्यारिम कि चिगडिल्ला जिङक्योङ कितुप दि ल्यारिम कर्णाली तङ सुदूरपश्चिम प्रदेश कि जोङखाङ कि तोङ टुक्चु सिनाङ हाक्पा मितिवाला फेन्सेन पोङगु सेनवाए परियोजना नङसिन लाम नाम गिरुवा नङसिन कृषि लोतोक एर्गे जप सेन्तियो गोतु मेन्साकी लोतोक गेसा जप नाम गिरुवा तेमा उङथोपु कले कुर्की बिमा तङ गोमालाराङ लेन खेपेल किथोपु प्रणाली गेसा जपला ल्यारिम जिङक्योङ कितुप लोनखाङकी सेनवाए दि परियोजना कि लगलेन एमबी सुङकी बजेट तङ सुङकी कोष तेमा कितुप लोनखाङकी सेतुपिन म्यान टडिक छोकमी बजारला म्यान युङमो डोमी जितुपला म्यान कि स्टक जोकु टडिक लगलेन कितुप सेनवाए छोकपी सेतुप नङसिन तुसो तुसोला म्यान मलङ्गु तङ तान्दा क्यान्सर नजाकी म्यान्जुला थोकु अर्फन ड्रग्स युङमो ओतुप सेनवाए छोकपी महानिर्देशक सिवानी खड्गीकी तुसोला म्यान माङेसीमा निरपुतियो कालेला स्योर थोपु तपकी ठोतेन सेवा विभाग म्यान खाङ तङ डेलो ओतुप छोकमा तङ क्यान डिक्ने म्यान त्यो स्टक जोकु छर्सी गोचु सुङसुङ छोकपी सिगेल्ने खुर्ने गुप म्यान त्यो तङ यम्बुला दर्ता मेतुप म्यान तुई थो टडी क्याने रङयुल्ला रङ जप टडी किगो तेजिन सिगेल्ने खुर्ने गुप न्याताङ जोलोमुजोगो सेनवाए सिगेलकी ग्यालखप नाछोकला तुङ्गी सिंह ट्याङ्गालाउ क्योनला मिरङ्गा लाजिम्बु सेनवाए केन्द्रीय कोर्सुङमकमी छोकपी सेतुप नङसिङ सिन्धुपाल्चोकी वाङदी लामा रामेछापकी ललित बहादुर तामाङ दादिङकी सन्तोषी लामा चन्द्रगिरी टोङ्केर ओडा आङ्गेकी रामदास महर्जन तङ काठमाडौँ महानगरपालिकाकी सरिप गिरीला जिम्बु सेनवाए खोङतिवाला अजरबैजान कोसोबो स्पेन युएई तङ क्यानाडा तुङ्गी सिंह मितुइलाने ट्याङ्गालाउ क्योनला काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान ल्याखुङ तेमा लक्लेन क्याउ कोर्सुङमकमिकी छोकपी जिम्बुइन जिम्बु मितिवाला ठिम तङ्गुप तन्दोक्ला तन्दा वैदेशिक रोजगार विभाग थाहाचाल तङ्गुप सेनवाए ट्राफिक कोर्सुङमकमिकी गलुप छुदो निसुजी नाङला गाडी तङ्गुप मि तोङ तङ सै ङतङ सुम्चु सो अङला जिम्ने ठिम तङवाए तितेमा सुङला ट्याङ्गा बुम चुर्गु तङ तोङ दिन्छु थोन दिन ग्याठल दु सेनवाए काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक कोर्सुङमकमी ल्याखुङकी सेतुप नङसिन छाङारक थुने गाडी तङ्गुप ठिमकी खप्तेला राइड सेयरिङ एप थोकु ट्राफिक लाइट मिस्यु तङ गाडी स्पिडला तङ्गुप तेवला ठिम तङ्गुप सेनवाए दुग्राङ क्याने ट्राफिक लेन मिस्यु काङथेप दासाला हर्न तङ्गुप तङ काङथेप दासाला गाडी जाङने पार्किङ कितुप तेवलासँग टिम तङ्गुप सेनवाए चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जकी नाथुङ नाङ्ने सफारी सेवा आरिङ्ने जुन जिङक्योङ मिकितुप गनवाए निकुञ्जकी यर्बी तुसोला स्योतोक तङ टोकपाङगुप तङ लाम नाडोपतपकी मितिवाला कले उङथोपु तपकी सफारी जिङक्योङ मिकितुप थक्चोत क्याउ निकुञ्जकी लेन खेपेल कितुपमी अविनाश थापा मगरकी ख्यान्तोक नाङ्गुबिन
काभ्रे पलान्सो कि पाँच खाल टङ्केर वडा आङ झिला इबी गाडी कि गेम्ने स्कुटर तोङ्गुप मिमिरा चिक नासगल वाए जोङकी कोर्सुङमक मिल्याकुङ काभ्रे कि सेतुप नङसिन काठमाडौँ ने सिन्धुपाल्सो कि बाह्र विशेष छकला डोइङ ओतुप इबी गाडी कि गेम्ने सिन्धुपाल्सो कि जलबिरे हिल सोक्पा वडा आङ चिकला खाङबा हिन्दुप तान्दा पाँच खाल कि माइक्रो फाइनान्सला लाका कि ओतुप लोङी सुजी कि मिन कुमारी श्रेष्ठ

tagalubin napyokla shorne bangi kyon phoku shreshta duli khel man khangla menju ki tibrimbala nasa galup shenwae ibi tongup mi sindupal soki loship chushya sumki karna bahadur karkila kursung makmi ki zimne tanda nyamship ki hotup shenwae जल तेजिन मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा कि सेतुप नङसिन नारिङ्गेलखाप नङला नाम न्यु सेन वाय खाङरी तङ फु सगुलकी दासा बङ्गिला थक तङ डुग यक्थोपु तङ सरोग्यकु सेन वाय सिसी खाङरी सकुल्ला खा सङ यक्थोपु सेन वाय तुग्राङ क्याने तराई कि दासा लालाला थक गेकु सङ सेन वाय कोसी बागमती गण्डकी लुम्बिनी तङ कर्णाली प्रदेश कि फु सगुलकी दासा चिक्जोङी सोला छरो बङ्गी यक्थोपु तक पि चाकमुकी तुब्ला मिमाङ तेल सिउ वाय तुग्राङ क्याने आरिङ नुप्ला ग्यालखाप नङला दासा बङ्गिला नाम न्यु कोसी बागमती तेजिन लुम्बिनी प्रदेशकी फु सगुल्की दासा चिक्सोङी सोला छरग्यक्तो पुन्यातङ्गोदुप सेनवाय रेडियो नेपालले आरिङकी सेरिकेकी साङ्गिरु डुसुङ तुजिछे।

0: जोजोलपा थोख रेडियो नेपाल लेथौँ प्राविधिक पासा देवकी भण्डारी नप जी उपेश मर्जन जीवन दबु ज्याजो जना प्रत्यक्ष रूप वयाचनाले निरामी भाजमेचमी थौँ थन लोककवि राजभाइ जकमी झयादिगु दो ले वेक नप वेक चोयादिगु पुर्खाया पला ख्वा विशेष नियनकनी यागु जुई लसकुस दु राजभाइ जकमी जो
1: यज्ञको शुभा
0: हजुर निराम भाज मेचपी थौँ वेक्ला चोयादीको पुर्खाया पला खुवा या विशेष निन्कनी झ वेक यो बच्चा मसिका बिगो धैगो कथा चिसे चाहिँ थो ज्याजो झ्याकाचनागु घ तर वेक लोक कवि जिरङ्गु हुने वेक यो मसिका उली बि माठे चो छ्यादा छ वेक्ला यहाँ दुई योगदान हे काफिदु छम अमर सहित मना चोमे अमर सहित कथा न वेक त नाला क्यामली छ्यादा छ वेक्ला झि पुर्खाया गथिकी ने पेम मुनुटेगु वेक्ल चाहिँ चौ पुर्खाया पला खुवा रहेका वेक्ल चाहिँ असार बिस गते वेक्ल चाहिँ विमोचन नातिल प्रज्ञा भवने दासी निरा ब्याजमे थुए निन्कनी यागु ह दक्ले नापा वेक्ल चोयाना दिगु वेक्ल हानाना दिगु मेचपु निनी लेबु ढुङ्खा छि निन्कनी यागु जुई

यी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास थिक विजय झा सुनल झा मैथिली भाषामा समाचार। राष्ट्रिय सभा प्रविधि जन्य लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिसँग पारित कयलक अछि। सांसद रेणुचन्द प्रस्तुत केने प्रविधिके उपयोगक होवला लैङ्गिक हिंसा रोकथाम नियन्त्रण एवं महिलाके हकके संरक्षण आ न्यायमे पहुँच सुनिश्चित करबाक आवश्यक नीतिगत कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थाक प्रभावकारी कार्यान्वयन करबाक सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सभा सर्वसम्मतिसँग पारित कयलक अछि। राष्ट्रसभाके अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल सभासँ पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनके लेल महिला बाल बालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक आ सामाजिक सुरक्षा मंत्री प्रस्तुत केने प्रतिबद्धताके आधार पर प्राथमिकता के संग कार्यान्वयन करबाक लेल सरकार के निर्देशन देलन। संगे ओ संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन के सिलसिला में भेल काज सब के विषय में हरेक तीन महीना में कार्यान्वयन प्रगति सभा समक्ष पठावक लेल सेहो सरकार के निर्देशन देलन। विचार विमर्श में उठल विषय के जवाब देत महिला बाल बालिका मंत्री सीता वादी लैंगिक हिंसा रोकथाम नियंत्रण करबाक संबंध में कार्यान्वयन में रहल आ थौ व्यवस्था सहित लैंगिक हिंसा अंत करबाक व्यवस्था के एकीकृत कानून तर्जुमा करबाक उद्देश्य से अवधारणा पत्र तैयार कयने बतौलन। मंत्रीवादी लैंगिक हिंसा अंत करबाक व्यवस्था के एकीकृत कानून तर्जुमा करबाक तैयारी कयल गेल अवधारणा पत्र में प्रस्तावित कानून में समेटल गेल मुख्य विषय सब में डिजिटल हिंसा नियंत्रण के विषय रहल आ राय तथा परामर्श के लिए अर्थ मंत्रालय में पठौने जानकारी देलन। संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत करत सांसद रेणु चंद प्रविधि के विकास संगे महिला तथा बाल बालिका विरुद्ध होवे वाला हिंसा के स्वरूप परिवर्तन भेल आ ऐसा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता ऊपर गंभीर संग

संकट उत्पन्न भेल बतौलनि। सांसद चन प्रविधिजन्य हिंसाक लेल पीड़ित आ पीड़ित आमने सामने नहि हेबाक चाही। नकली तथा फेक आईडी के उपयोग क के संसार के कोनो कोना सा हिंसा कर सकबाक आ अपराध के कोनो भौतिक सीमा नहि हेबाक चर्च कलनि। ओ प्रविधि के प्रयोग क होबय वाला लैंगिक हिंसा के नया स्वरूप के समेटबा सन प्रचलित कानून के पुनरावलोकन आ परिमार्जन आवश्यक रहल बतौलनि। साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, रिवेंज पोर्न, डीप फेक, ऑनलाइन ग्रूमिंग जेहन अपराध सामाजिक विकृति फैलौने आ महिला के मानसिक तनाव, डिप्रेशन तथा आत्महत्या के स्थिति में पहुँचौने कहित नेपाल के विद्यमान कानून व्यवस्था साइबर अपराध नियंत्रण के लिए अपर्याप्त रहल हुनकर कहब छलन। लैंगिक हिंसा रोकथाम आ नियंत्रण के लिए प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव के 17 गोटे सांसद के समर्थन रहल अछि। प्रस्ताव ऊपर के विचार विमर्श में भाग लेत सांसद सब डिजिटल माध्यम से होबय वाला लैंगिक हिंसा बढ़ित गेल कहे तत्काल कानूनी आ संस्थागत व्यवस्था करबाक लेल सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। सांसद सब इंटरनेट आ स्मार्टफोन के पहुँच तीव्र गति में बढ़ल बावजूदो डिजिटल साक्षरता के अभाव में महिला किशोरी हिंसा के शिकार भ रहल पाठ्यक्रम में डिजिटल शिक्षा समावेश करबाक चाही मांग रखलनि। सांसद सब फेसबुक जेहन बहुराष्ट्रीय कंपनी नेपाल में दर्ता नहीं भेला से अनुसंधान में ढिलाई भ रहा चर्च करित सामाजिक संजाल आ इंटरनेट सेवा प्रदाय के कानूनी दायरा में आन क आपत्तिजनक सामग्री तत्काल हटावे वाला प्रणाली सुनिश्चित करबाक चाही पर जोर दिलन। राष्ट्रसभा के दोसर बैठक काल दिन के 1:15 बजे बैसत। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नवनिर्वाचित पदाधिकारी आ केंद्रीय सदस्य पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण कलने छे। पार्टी केंद्रीय कार्यालय वनस्थली में आयोजित एक विशेष समारोह के बीच पार्टी सभापति रवि लामिछा ने हुनका सबके शपथ करौलनि। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री एवं वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह उपस्थित नहीं भेल छलथि। चितवन में सम्पन्न पार्टी के पहल महाधिवेशन से 6 गोटे पदाधिकारी आ 99 गोटे केंद्रीय सदस्य निर्वाचित भेल छलथि। सभापति लामिछा ने महाधिवेशन स्थले में शपथ ग्रहण क चुकल छथि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध ऑपरेटन समिति के बैठक में 2027 के आरोग्य वर्ष के रूप में मनेबाक संदर्भ में ओके तैयारी संबंध में विचार विमर्श भेल। समिति के सिंह दरबार में बैसल बैठक में सांसद सब 2027 में मनावल लागल आरोग्य वर्ष के कार्य योजना के प्रभावकारी कार्यान्वयन में आवश्यक रहल बतौलन। सांसद सब आरोग्य वर्ष पर्यटन क्षेत्र के प्रवर्धन में नया कदम भेल बतबैत एक लेल सहज बाता बाजारीकरण लगानी आकर्षण नीतिगत स्पष्टता तथा पर्यटन क्षेत्र के सब सरकार वाला निकाय बीच समन्वय के आवश्यक रहल बतौलन। अहिना सांसद सब नेपाल के विभिन्न बिना विमान स्थल में पर्यटक के लिए इंटरनेट सेवा के पहुंच विस्तार अध्यागमन प्रक्रिया में थप सहजीकरण तथा सिम कार्ड के सहज उपलब्धता सुनिश्चित करबाक चाही पर जोर दलन। सांसद सब आंतरिक विमानस्थल के सर सफाई व्यवस्थापन के व्यवस्थित बनबैत अपांग मैत्री पूर्वाधार विकास करबाक लेल सेहो आवश्यक रहल बतौलन। बैठक में सभापति शिवनीमा उदास नेपाल के हिमालय सौंदर्य जड़ी बूटी आ प्राकृतिक संपदा के आरोग्य पर्यटन के आधार पर विकास करित मौलिक पहचान के विश्वव्यापी प्रवर्धन कायल जेबाक चाही बतौलनि। अहिना सरकार वाला आरोग्य वर्ष 2027-27 के पूर्व तैयारी के लिए रणनीति मापदंड आचार संहिता आ कार्य योजना के तैयारी सम्पन्न भ अंतिम चरण में पहुँचल जानकारी दिलनि। आय से शुरू भेल मध्य प्रदेश सभा के बैठक के प्रमुख प्रतिपक्षी दल आवय वाला आर्थिक वर्ष के लिए आनल गेल बजट में व्यापक त्रुटि भेल कहित अवरोध कलक। प्रदेश सभा के बैठक शुरू होबय लगले प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के प्रदेश सभा के सदस्य उपेन्द्र महतो 1 करोड़ से अघटी के योजना नहीं आना के सरकार के प्रतिबद्धता रहल बावजूदो 5 लाख से लेकर 40 लाख धर के योजना सब आन के काज प्रदेशवासी विपक्षी दल सबके ठग के काज के निकहित बजट संशोधन के मांग सहित बैठक अवरुद्ध कलने छे। वो प्रदेश सरकार अलग अलग प्रकृति के काज सबके योजना सब एक ही ठाम राख कर बजट विनियोजन कायल गेला से एक कार्यान्वयन संभव नहीं भेल कहित बजट के न्यायोचित विनियोजन सहित संशोधन नहीं भेल धर बैठक चल नहीं दे बतबैत अपन अपन ठाम से उठ कर विरोध कलाक बाद सभामुख राम आशीष यादव 10 मिनट के लिए बैठक स्थगित कने छलथि। ऐसे पहिने सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक कुमारकांत झा धनसा स्वास्थ्य कार्यालय के काज ठेकेदार कने बावजूदो रकम निकासा करब में अर्थ मंत्रालय बजट रोका के नियम में विरोध
कयने छलथि। प्रदेश सरकार आबयवला आर्थिक वर्षक लेल विनियोजन कयने बजट के विभिन्न मंत्रालय के शीर्षक सब पर आइ सँ विचार विमर्श हेबाक कार्यक्रम तय भेल बावजूदो प्रतिपक्षी दल सब अवरोध के कारण विचार विमर्श शुरू नहीं होते स्थगित भेल अछि। मध्य प्रदेश सरकार आबयवला आर्थिक वर्ष 2083-84 के लेल 41,13,46,00,000 के बजट अन्य छल। प्रस्तुत कयल गेल बजट में कृषि नव प्रवर्तन उद्यमशीलता प्रवर्धन शिक्षा स्वास्थ्य के प्राथमिकता में राखल गेल अछि। पूर्व पश्चिम महेंद्र राजमार्ग अंतर्गत के होटल समय जनता के स्वास्थ्य संग खेलवाड़ कर खाद्य सामग्री के उत्पादन तथा बिक्री भ रहल व्यापक शिकायत अलाक बाद होटल सब के स्थलगत अनुगमन भेल अछि। मध्य प्रदेश सरकार के गृह कानून तथा संचार मंत्री फकीरा महतो सहभागी रहल अय अनुगमन टोली लालगढ़ स्थित चर्चित बौआ होटल में रखने बिक्री के लिए राखल गेल 15 किलो मांस तथा माउस के तत्काल मशीन से परीक्षण कला पर खाना योग्य नहीं भेटलाक बाद होटल संचालक के 25,000 जरिमाना कलक। अनुगमन में सहभागी धनसा के सहायक प्रमुख जिलाधिकारी एवं निरीक्षक कृष्ण गैरी होटल के संचालक के खाद्य ऐन हिसाबे ठाम ठाम में आवा वाला दिन में स्वास्थ्य सामग्री बिक्री वितरण करवाक लेल निर्देशन दैत जरिमाना करवाक संगे अखाद्य माछ माउस नियंत्रण में लक नष्ट कयल गेल अछि। मध्येश के गृह मंत्रालय जिला प्रशासन कार्यालय धनसा खाद्य प्रविधि तथा गुड़ नियंत्रण कार्यालय जनकपुर धाम के संयुक्त टोली लालगढ़ अढ़लकेवर क्षेत्र में संचालित अन्य होटल तथा दुकान में अनुगमन का म्याद समाप्त भेल लेवल नहीं भेल मसाला तेल तथा अन्य सामग्री सब सहित 5 क्विंटल खाद्य पदार्थ नियंत्रण में लक नष्ट कैने सहायक प्रमुख जिलाधिकारी गैरी अ के जानकारी दिलने। उच्च अदालत जनकपुर धाम राजविराज इजलास सँ राजविराज नगरपालिका निजी विद्यालय तथा गुठी विद्यालय के शुल्क वृद्धि कला पर कानूनी प्रक्रिया पूरा नहीं केने प्रारंभिक देखल गेला से निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहीं करबाक लेल अंतरिम आदेश दिलक। शुल्क वृद्धि निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता सुरेश कुमार सिंह दायर कैने उत्प्रेषण तथा परमादेश के रिट निवेदन पर सुनवाई करित न्यायाधीश द्वय देश बहादुर सार्की आ अच्युत कुमार आचार्य के संयुक्त इजलास मंगल दिन अंतरिम आदेश जारी कलक। इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल कार्ज लेबनान सीरिया आ गाजा में स्थापित स्वघोषित सुरक्षा क्षेत्र से तत्काल इजरायली सेना फिरता होबयवला कोनो सीमा समय सीमा नहीं तोकल गेल बतौलन अछि। स्थानीय बासिंदा के जिहादी से बचेबा लेल IDF लेबनान सीरिया आ गाजा के सुरक्षा क्षेत्र में अनिश्चित काल धरिक लेल या एतहि रहबाक रक्षा मंत्री इजरायल कार्ड्स बतौलन अछि। सन 2006 के युद्ध में मारल गेल इजरायली सैनिक के सम्मान में आयोजित समारोह में कार्ड्स सुरक्षा क्षेत्र से पाछू नहीं हटब से बतौलन अछि। कार्ड्स लेबनान में अपन कार्रवाई के लक इजरायल ऊपर आक्रमण कैला पर ईरान ऊपर पूर्ण बल प्रहार करबाक चेतावनी सेहो देलन अछि। इजरायल लेबनान शुक्र दिन अमेरिकी प्रायोजन अंतर्गत अमेरिकी मध्यस्थता के समझौता में हस्ताक्षर कैने छल। आब खेल समाचार। स्टार स्ट्राइकर एरलिंग हालांड खेल के अंतिम निर्णायक गोल कलाक बाद नॉर्वे फीफा विश्वकप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कलक। अमेरिका के डालास स्टेडियम में मंगल दिन रात भेल राउंड ऑफ 32 खेल में नॉर्वे आइवरी कोस्टा के 2-1 गोल से स्तब्ध बनौलक। नॉर्वे के जीतावा एंटोनियो नूसा आ हालैंड गोल कलन। नूसा 39वां आ हालैंड खेल समाप्त होब के 4 मिनट बाकी रहित काल गोल कने छलित। जारी विश्वकप में हालैंड के व्यक्तिगत 5वां गोल अछि। आइवरी कोस्टा के लेल अमार डायलो 74वां मिनट में गोल सांतावना बनल। अंतिम 16 में नॉर्वे 5 बेर के विश्वकप विजेता ब्राजील संग प्रतिस्पर्धा करत। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुन रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रविधि पर आधारित लैंगिक हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा से पारित। सोशल मीडिया और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कानूनी दायरे में लाने पर सांसदों ने दिया जोर। निर्धारित समय पर नीति कार्यक्रम और बजट प्रस्तुत न करने वाले 23 स्थानीय निकायों से संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने मांगा स्पष्टीकरण। उच्च शिक्षा की शैक्षिक गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक कैलेंडर क्रियान्वयन में। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों के अमेरिकी नागरिकता पाने के अधिकार को बरकरार रखने का अमेरिकी सर्वोच्च अदालत का फैसला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा ने प्रविधि पर आधारित लैंगिक हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। सांसद रेणु चंद द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प प्रस्ताव में प्रविधि के माध्यम से होने वाली लैंगिक हिंसा की रोकथाम, नियंत्रण तथा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और न्याय तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नीतिगत, कानूनी और संस्थागत व्यवस्था कर उसके प्रभावी क्रियान्वयन की बात कही गई है। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल ने महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री द्वारा व्यक्त प्रतिबद्धता के आधार पर इस संकल्प प्रस्ताव को प्राथमिकता के साथ लागू करने का सरकार को निर्देश किया। उन्होंने इसके क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक 3 महीने में राष्ट्रीय सभा के समक्ष प्रस्तुत करने का भी निर्देश किया। इससे पहले चर्चा में उठे प्रश्नों का उत्तर देते हुए महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री सीता वादी ने कहा कि लैंगिक हिंसा की रोकथाम और उन्मूलन के लिए अतिरिक्त प्रावधानों सहित एक समेकित कानून तैयार करने के उद्देश्य से अवधारणा पत्र तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित कानून में डिजिटल हिंसा की रोकथाम को प्रमुख विषय के रूप में शामिल किया गया है तथा इसे और परामर्श के लिए अर्थ मंत्रालय भेजा गया है। चर्चा में भाग लेते हुए सांसदों ने कहा कि डिजिटल माध्यमों से होने वाली लैंगिक हिंसा लगातार बढ़ रही है और इससे निपटने के लिए तत्काल कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था की जानी चाहिए। सांसदों ने यह भी कहा कि इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच तेजी से बढ़ने के बावजूद डिजिटल साक्षरता के अभाव में महिलाएं और किशोरियां हिंसा का शिकार हो रही है, इसलिए विद्यालयी पाठ्यक्रम में डिजिटल शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए। आज की बैठक में सांसदों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि सरकार नेपाल और भारत के बीच सीमा संबंधी समस्याओं का समाधान ऐतिहासिक संधियों, नक्शों और तथ्यों के आधार पर कूटनीतिक माध्यम से करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नेपाल भारत द्विपक्षीय तकनीकी समिति अधिकांश क्षेत्रों की सीमा निर्धारण प्रक्रिया पूरी कर चुकी है, लेकिन लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी और सुस्ता क्षेत्रों का सीमांकन दोनों देशों की तकनीकी टीमों द्वारा अभी किया जाना बाकी है। मंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों से संबंधित प्रमाण और नक्शे नेपाल के पास उपलब्ध है तथा सरकार इन्हीं प्रमाणों के आधार पर द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से भारत के साथ मतभेद सुलझाना चाहती है। सांसद बिष्णु बहादुर विश्वकर्मा के प्रश्न का उत्तर देते हुए परराष्ट्र मंत्री खनाल ने कहा कि जिन क्षेत्रों का सीमांकन शेष है उन्हें छोड़कर अन्य क्षेत्रों में सीमा माप से संबंधित तकनीकी समिति अपना काम कर रही है। परराष्ट्र मंत्री खनाल ने यह भी कहा कि मुस्तांग जिले में यूरेनियम खनिज होने के कुछ प्रारंभिक अध्ययन और संकेत मिले हैं तथा इस संबंध में आगे का अध्ययन और अन्वेषण खनिज एवं भूगर्भ विभाग के माध्यम से किया जाएगा। विशेष शून्य तथा अन्य समय में सांसदों द्वारा उठाए गए विभिन्न विषयों का उत्तर देते हुए परराष्ट्र मंत्री खनाल ने कहा कि सरकार संविधान, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्थापित सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए सुशासन और आर्थिक समृद्धि को प्राथमिकता दे रही है। बैठक में सांसद विष्णु बहादुर विश्वकर्मा के प्रश्न का उत्तर देते हुए संस्कृति, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री खड़गराज पौडेल ने कहा कि कालीकोट के सुंथ राली विमानस्थल के संचालन में सबसे बड़ी समस्या यात्रियों की कमी की संख्या है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि स्थानीय निकायों और वायुसेना सेवा निगम के बीच समन्वय स्थापित कर नियमित यात्रियों की सुनिश्चितता होती है तो सरकार वहां आवश्यक जनशक्ति, संचार उपकरण और अन्य तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक के दौरान सांसदों ने वर्षा ऋतु शुरू होने के साथ देश के विभिन्न भागों में बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की समस्याएं बढ़ने का उल्लेख करते हुए सरकार से समय रहते बचाव, सुरक्षित आवास तथा राहत की तैयारी और प्रभावी प्रबंधन करने की मांग की। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल ने आकस्मिक विशेष शून्य समय में सांसदों द्वारा उठाए गए विषय पर संबंधित मंत्रियों को जवाब देने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1:15 के लिए बुलाई गई है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *14 हेस डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने आर्थिक वर्ष 2083-84 की वार्षिक नीति, कार्यक्रम और बजट निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थानीय सभा में प्रस्तुत न करने वाले 23 स्थानीय निकायों से स्पष्टीकरण मांगा है। मंत्रालय ने आज पत्र जारी कर संबंधित गांव पालिकाओं और नगर पालिकाओं को 3 दिनों के भीतर बजट निर्माण प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा देरी के कारणों का स्पष्ट विवरण भेजने का निर्देश किया है। मंत्रालय ने कहा कि उसके पोर्टल द्वारा दर्ज विवरण और प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर यह पाया गया है कि कुछ स्थानीय निकायों ने अब तक आर्थिक वर्ष 2083-84 का बजट कानून में निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा में प्रस्तुत नहीं किया है। इसी कारण उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही मंत्रालय ने स्थानीय निकायों से आषाढ़ माह के अंत तक बजट पारित कराने में सुविधा के लिए स्थानीय सभा की आगामी कार्यसूची भी मंत्रालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। कानूनी व्यवस्था के अनुसार स्थानीय निकायों को आगामी आर्थिक वर्ष का बजट आषाढ़ 10 तक कार्यपालिका से स्वीकृत कर सभा में प्रस्तुत करना तथा आषाढ़ माह के अंत तक उसे पारित करना अनिवार्य है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने उखलढुंगा के चंपा देवी गांव पालिका के तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम प्रसाद सुवेदी सहित 2 व्यक्तियों के विरुद्ध 18,50,000 रुपए के भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। आयोग के प्रवक्ता सुरेश न्योपाने द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सुवेदी भक्तपुर के मध्यपुर ठीमी 6 स्थित शीरिस कंस्ट्रक्शन तथा कंपनी के संचालक प्रकाश नाचीरिंग राय के विरुद्ध विशेष अदालत काठमांडू में मामला दायर किया गया है। आरोप है कि आर्थिक वर्ष 2077-78 में पलापू पेयजल योजना के ठेका समझौते को रद्द कर कंपनी को काली सूची में डालने संबंधी निर्णय का पालन नहीं किया गया, साथ ही बैंक गारंटी की राशि का गबन कर भ्रष्टाचार किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि उच्च शिक्षा की शैक्षिक गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित, योजनाबद्ध और प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक कैलेंडर विकसित कर लागू किया गया है। आयोग ने विश्वविद्यालयों की शैक्षिक गतिविधियों को एकीकृत और कैलेंडर आधारित बनाने के उद्देश्य से सभी विश्वविद्यालयों के समन्वय से राष्ट्रीय शैक्षिक कैलेंडर लागू किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्म के आधार पर नागरिकता के संवैधानिक अधिकार को बरकरार रखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें अवैध रूप से रह रहे या अस्थायी वीजा पर अमेरिका में मौजूद लोगों के अमेरिका में जन्मे बच्चों को स्वतः नागरिकता देने की व्यवस्था समाप्त करने का प्रयास किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा गया है कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत अमेरिका में जन्म लेने वाला लगभग हर बच्चा अमेरिकी नागरिक है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति कार्यकारी आदेश के माध्यम से संविधान द्वारा प्रदत्त इस अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रविधि पर आधारित लैंगिक हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा से पारित। सोशल मीडिया और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कानूनी दायरे में लाने पर सांसदों ने दिया जोर। निर्धारित समय पर नीति कार्यक्रम और बजट प्रस्तुत न करने वाले 23 स्थानीय निकायों से संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने मांगा स्पष्टीकरण। उच्च शिक्षा की शैक्षिक गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक कैलेंडर क्रियान्वयन में। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों के अमेरिकी नागरिकता पाने के अधिकार को बरकरार रखने का अमेरिकी सर्वोच्च अदालत का फैसला। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
4: फोर्जी LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VOLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ज र VOLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
5: नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडका कर्जा ग्राहकहरूलाई ब्याज छुटसहित कर्जा चुक्ता वा नियमित गर्न आउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना। यस ब्याङ्कबाट कर्जा उपभोग गरी विक्रमसम्म 2079 साल चैत्र मसान्त अगाडि खराब वर्गमा वर्गीकरण भएका बकेउता सावारू 1 करोडसम्मका खराब तथा अपलेखित कर्जा ग्राहकहरूलाई विक्रमसम्म 2083 साल आषाढ मसान्तभित्र योजना अनुसार ब्याज छुट सुविधा सहित कर्जा चुक्ता गर्ने अवसर प्रदान गरिएकोले सम्बन्धित कर्जा ग्राहकहरूले ब्याज छुटको सुविधा लिनुभई कर्जा चुक्ता गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ। साथै विक्रमसम्म 2080 साल वैशाख 1 गते पश्चात निष्क्रिय वर्ग र सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जा ग्राहकहरूले विक्रमसम्म 2082 साल चैत्र मसान्तभित्र बकेउता सावा ब्याज बुझाई कर्जा चुक्ता वा नियमित गरेमा ब्याज छुटको व्यवस्था गरिएकोले यस ब्याङ्कको नजिकको शाखा कार्यालयमा जानुभई ब्याज छुट सुविधाको लाभ लिनुहुन अनुरोध गर्दछौ। शर्त तथा बन्देजहरू लागू हुनेछ।
3: समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क।
6: सरकारले बाल बालिकाका लागि 13 प्रकारका रोग विरुद्ध, गर्भवती महिलाका लागि 2 प्रकारका रोग विरुद्ध र किशोरीहरूका लागि पाठेघर मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
7: कहिले र कुन खोप लगाउने त?
6: 15 महिनासम्मका बाल बालिकाले
7: जन्मने बित्तिकै BCG, 6 हप्तामा रोटा, पोलियो, PCB, DPT, हेपबिहिपको पहिलो मात्रा, 10 हप्तामा रोटा, पोलियो, PCB, DPT, हेपबिहिपको दोस्रो मात्रा, 14 हप्तामा पोलियोको तेस्रो मात्रा, FIPV पहिलो मात्रा, DPT हेपबिहिपको तेस्रो मात्रा, 9 महिनामा दादुरा रुबेलाको पहिलो मात्रा, FIPVको दोस्रो मात्रा, PCV को तेस्रो मात्रा,
6: 12 महिनामा जाफनेस इन्सेफ्लाइटिस, 15 महिनामा दादुरा रुबेलाको दोस्रो मात्रा र टाइफाइड खोप।
7: त्यस्तै गर्भवती महिलाले TT खोप तथा कक्षा 6 पढ्ने छात्रा तथा विद्यालय बाहिरका 10 वर्षकी किशोरीले HPV खोप लगाउनु पर्छ। नियमित खोप लगाउँदा विभिन्न संक्रामक रोगको संक्रमण, अपाङ्गता र मृत्यु दरलाई कम गर्न सकिन्छ। त्यसैले सबै खोप तालिका अनुसार नै खोप पूरा गरौं।
6: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र।
8: परदेशको सपना बोकेर निस्किँदा घर परिवारको आशा बाँधिएको हुन्छ, तर श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्दा दुर्घटना वा मृत्यु भयो भने न सहयोग पाइन्छ न बिमाको भर पर्न सकिन्छ।
9: श्रम स्वीकृति लिएर मात्र विदेश जाऊ, परिवार सुरक्षित, भविष्य सुरक्षित।
8: वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय,

जाको अंग अंग अस प्यारो शत अनंग वारो कह कृपालु एतिक प्यारो पिय रसिकन कह कारो हमारो पिय प्राणन प्यारो। जसको अंग अंग करोड़ों कामदेवलाई पनि लज्जित गराउने छन्, जो रसिक भक्त का प्राण प्रिय छन्, उन्हें श्री कृष्ण ने मेरा सनातन प्रियतम हुन्, म उन्हें को शरण में छु। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण में प्रेम पुष्पहार अर्पण करते अध्यात्म संदेश कार्यक्रम में यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत एवं राधे राधे। श्यामाश्याम धाम ठिमी द्वारा प्रस्तुत आध्यात्मिक ज्ञान एवं सत्संगमूलक यो अध्यात्म संदेश कार्यक्रममा सर्वप्रथम श्रवण गरौँ श्री कृष्ण माधुरीमा आधारित पद। यस पदमा एक गोपिनी आफ्नी अन्तरङ्ग सखीसित प्रियतम श्यामसुन्दरको हिँडाई एवं सुन्दरताप्रति आफू सम्पूर्ण रूपले प्रभावित भएको वर्णन गर्छिन्।